0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: जिंदगी की स्पीड और गर्मा गर्म चाय की नीड हमेशा रहती है, सो कीप द मोमेंटम गोइंग बिकॉज वीव गॉट यू कवर्ड. रॉयल चाय प्रीमियम इंस्टेंट टी, बस सैशे खोलो, गर्म पानी घोलो और एक लंबी चुस्की लेकर बोलो वाह. कड़क मसाला, इलायची और कश्मीरी, चूज योर चाय एंड हैव इट रेडी इन अ मोमेंट. रॉयल चाय, कहीं भी कभी भी.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा. घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं. मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली. ओपन ट्यूसडे टू संडे.
0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
4: This is Sunrise, the UK's biggest. Asian. Mix.

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।